0: कितना पाग है
1: ये प्यार तो
0: ये प्यारी तो तुमसे कितना है
1: दिल भी कितना पागल है ये
0: ni kama moyo wangu na unachizika
1: दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे
0: kwamba unakupenda wewe
1: मेरा दिल भी
0: मेरा दिल भी कितना पागल है।